जाने ले लाम तुलों को सुनी ना कैको फूलीले लांगंतुलंको I got him.

यो बेंगलोर जाऊँ ना ता रुंचा माना दूर दूर तेरी मैं दुई चार पैसो चार बाड़ा माना देखूँगा खेरी मैं जागीर खामना ता आई मेरा साथी यो बेंगलोर जाऊँ ना ता रुंचा माना दूर दूर तेरी मैं दुई चार पैसो

0: एक हाथ में धर्म को शास्त्र और को हाथ में अन्याय को अंत करने शक्ति।
1: अन्नपूर्ण चलचित्र मंदिर बेसी शहर में यही असोज 9 गते शुक्रवार देखि भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ। नेपाली चलचित्र मध्याह्न 12 बजे आचार्य।
2: जसले सजिले झटसँग मारिदिन्छ ऊ क्रिमिनल, जसले बिस्तारै बिस्तारै मार्छ त्यसलाई तिमहरू प्रेमी सम्झिन्छौ हैन।
1: कलाकारहरू निखिल उप्रेती, पूर्णिका सिजापति, दीपराज राणा, प्रमोद अग्रहरी लगायतका कलाकार

0: Bueno, Ricardo, guarda. Ahí le di un pastayo.
1: Azur, azur, sí, gip ya no va a ser ejecución, ya le gip ya no está con un ensayo.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no,
0: no, Mujer mere hase pani bhitri manare cha Mujer mere hase pani bhitri manare cha Pahe chakare kare ila kahe huncha Man ko kura lao kae manai na Ekle basi na rohai Saan take banai na Thidin gari gao Se tere maya lagai gao So tere maya lagai jau Let me wale ita Jira ke paha na po Jit gai hai sister
1: Azur, ek dami ramu gip gano bhai ko thiyo Tarali kati network le saath na diye ko bhai Radi kati pashta suniye na hai
0: Azur, azur, ama Teri kule din pashta gao la ni
1: Azur, uncha, kakas le samjana chahan uncha Azur ko basai bata
0: अरे समझने पर वह खेलते सर्व पसंद है जिनके नाम दूसरे पर कार्यक्रम संचालन कर रहे हैं ना चिंता आजू बाजू इंटरव्यूशन में प्रदर्शन होने इंटरव्यूशन मित्र हम लोग लिस्ट लाइव बनना चाहें मशहूर दूसरे नाम इंटर टीम लाइव बनना चाहें
1: मजूर
0: अनिश्चित स्थिति के साथ जिला बनने पर जीवन साथी का मला रसायनिक टीम का लाता है दिखने संबंधित मनुष्य सर पसंद में बताओ जब तक तारा संकराम किसने कल अपिता करे मिला मन माया दिन तपाल सुबह भी सुनी सुनी अर्पा दर्शनी संगना बड़ाई नी सुबिया बांटा वाराई सोई राई दिलना फुलाई या कुछ गीता लिंबु अन्य हमको सिंपल सारीना गुरु सिंपल संगीता भंपला दानों का जहर करता गतानी सबसे खेल डॉक्टर धर्मता देवन किशोर आंजन रात गाने गावन के अपने काली कमला वाले अन्य आदाशी सिखाना विश्व कर्मा अन्य हम मिस्टर निर्मला लाम गादे जिन्नी जिन्नी का चांदनी राई राम थापर दे बिलाल भूपाल दे अरिमा चमला गाई दिनात मिश्रा खरगोश संकर माता धानकुमार खाती अरिमा सेंचुरी स्वांग मा लिंबू यजनी में लिंबू समसर लिंबू मला सुप्रभात रसानी निर्देश मीडिया प्रेमी डालर चिन्ने ना चिन्ने सावेला सुनाने मत दिला बार उत्तर डाबलू चुकने लागे हैं तो सिस्टर ओके बाबाई नमस्ते टेक्टा
1: हजुर सर नमस्ते बाय बाय भरकरे मात्र सुक्र जिले एकदम राम्रो गीत गाउनु भएको छ नेटवर्क को इश्यूज ले गर्दाखेरि अलिकति प्रष्ट चाहिँ सुनिएको थिएन र अवश्य हामी कार्यक्रमबाट छुटिनु पर्ने हुन्छ आज एकदम राम्रो गीत गाउनु भयो तपाईले र कार्यक्रमको सुरुमा मैले पनि गीत गाउनु पर्ने थियो तर मैले सुरुमा चाहिँ गाइन अन्तिममा भए पनि म छोटो गीत गाउँछु यहाँले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ कमेन्ट मार्फत

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ.
1: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक, टेस्ट द डिफरेंस, फील द एनर्जी.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: अनिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुलेर जियो
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी